हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि

इसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सबसे पहले समूह स्वर में मातृवंदना, रचना है डॉक्टर ललित मोहन की।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे डॉक्टर ललित मोहन। मातृवंदना के बाद आइए आपको सुनवाते हैं गणेश वंदना। कलानाथ शास्त्री जी की ये रचना है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर।

0: कवि नारायण अग्रवाल की ये रचना आप सुन रहे थे अनुप जलोटा और साथियों के स्वर में। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 6:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में श्रोताओं, बस सबसे कुछ ही पलों में यानी 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वरूप अनुराधा पौड़वाल का बोले बिस्तरे गीत आपको सुनवाएंगे 6:40 से। सुबह सुबह हमारा दैनिक वैचारिक क्रम होगा 7:00। कृषि चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कृषि संकेत सुनेगा 7:05 से। मन चाय गीत कार्यक्रम सुनवाएंगे 7:20 से। और 7:45 का समय होगा गांधी चर्चा के लिए। 8:15 पर आपको सुनवाएंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। 8:30 का समय होगा रूपक के लिए। आज होगा अगस्त्य क्रांति। ये रूपक आप सुनेंगे। आलेख होगा रमेश बख्श का और प्रस्तुति होगी बांके नंदन की। सुबह 9:00 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। गुलदस्ता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें और कवालियां आपको सुनवाते हैं 10:05 से। आपकी फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत लेकर आएंगे। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद समय 10:30 और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपको सुनवाएंगे 11:00। 11:30 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर 2:00 फिल्म संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे सुनेगा शाम 5:30 से। और 5:35 से संगीत सरिता कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सदाबहार गीत लेकर आएंगे 6:30 से। और लोकरंग कार्यक्रम होगा 6:45 पर। ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:20 पर हमारे स्टूडियो से ही। और रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी संगीत होगा 8:20 पर। और आपके फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत लेकर आएंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम में रात्रि 9:00। 9:30 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30

0: मिनट पर।
1: और अब कार्यक्रम विवरण में समाचारों का विवरण। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे 6:55 पर दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं सुबह और शाम 7:10 पर और दोपहर 2:10 पर। इन्हें हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाता है।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरित्रमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल का।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक स्पर्धा अनुराधा पौडवाल का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 MHz पर 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत लता मंगेशकर के स्वर में, हाउस नंबर 44। फिल्म से ये गीत हमने लिया। इसे स्वरबद्ध किया SD वर्मन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब सुनवाते हैं आपको मसरूर सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत एस टी वर्मन के संगीत निर्देशन में 9-2-11। इस फिल्म का ये गीत है और आवाज़ें दी किशोर कुमार और आशा भोंसले ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत। शंकर जयकिशन ने इसे संगीत से सवारा और फिल्म का नाम जहां प्यार मिले।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूलो बिस्तरे की संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सागर है। 6:55 होने को है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 MHz पर 7 बजे हैं। सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम। वैचारिक क्रम आपको सुनवाएंगे, उसके पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और श्रोता, अब कार्यक्रम सुबह सुबह। मुझे भय नहीं अपने हिस्से के अंधकार से, कि थाम लूं कोई और हाथ, कि चल पड़ूं किसी भी राह। मैं स्वयं खुश हूं, संतुष्ट हूं, अपूर्ण हो सकती हूं, अव्यवस्थित नहीं। श्रोता, इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम सुबह सुबह में स्वीकारें चंचल का नमस्कार। श्रोता, हम अक्सर अपनी खुशियों को उन चीज़ों से जोड़ देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। कभी हालात से शिकायत, कभी लोगों से, कभी रिश्तों से और कभी किस्मत से। जबकि श्रोताओं, सच तो ये है कि ज़िंदगी कभी पूरी तरह हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चलती। कुछ न कुछ हमेशा कम रहेगा ही, कुछ न कुछ मन के विरुद्ध होगा ही। ये जीवन है और जीवन का यही अटल नियम है, किसी को भी 100% कुछ नहीं मिलता। शुद्ध जो व्यक्ति सिर्फ कमियों को ही गिनता रहता है, उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी उसका मन खाली ही रहता है। और इसके विपरीत, जो इंसान जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख लेता है, उसकी शिकायतें अपने आप ही कम होने लगती हैं। उसे हर दिन कोई बड़ी वजह खुश होने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि एक सुकून भरी सुबह, एक कप चाय, अपनों का साथ, चैन की नींद और मन का संतोष भी खुश होने के लिए काफ़ी होता है। श्रोताओ, शायद धरती पर सबसे ज़्यादा सुखी वही है जिसे जीवन से सब कुछ पाने की आशाएं नहीं हैं, यानी जो मिला उसी में खुश हैं। उसे ही महसूस कीजिए। श्रोता, जीवन जीने का आधार केवल उम्मीदें नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना है। यदि भीतर आनंद, संतुष्टि, विश्वास और स्थिरता है, तो परिस्थितियां कैसी भी हों, हम आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लेते हैं। और श्रोताओं, खुश रहने और खुशी पाने के लिए आपका मन और शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। थोड़ा सा कठिन है श्रोताओं, पर नामुमकिन भी नहीं कि खुशियों को स्वयं में तलाश करना। और जब आपका मन अच्छा होगा

0: तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इसीलिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीजिए अनुमति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: शुदा, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक्रम सुबह सुबह। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृषि संकेत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सब्जी फसलों में जैविक कीट नियंत्रण। इस विषय पर जानकारी देंगे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी।
1: सब्जियों में हमारे यहाँ टमाटर काफी रकवा है, टमाटर का, और आपका बैगन, मिर्च, प्याज और गोभी। पूरा साल हमारे जिले में गोभी की खेती किसान भाई कर रहे हैं, तो समय समय पे इनमें तमाम तरह की बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप होता है, और इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई बाजार से जो कीटनाशी हैं या फफूंदनाशी हैं उनको लेके आते हैं और बार बार उनका स्प्रे करते हैं, जिससे कीटनाशियों की जो एक तो प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है कीड़े और बीमारियों में, और साथ ही साथ कीटनाशी या फफूंदनाशी के अवशेष हमारी फसल के साथ रहते हैं, खासतौर से सब्जियों में जो सीधी खाई जाती है। तमाम तरह की हरी सब्जियाँ हैं, इनमें सीधे मात्रा में ये दवा लंबे समय तक रहती है, और जब हम इसका सेवन करते हैं तो तमाम तरह की बीमारियां, उनकी विषाक्तता इसकी वजह से होती है। तो जहां भी हम किसान भाई जब सब्जी की हमने प्लानिंग की है, सब्जियां लगाई हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम सब्जियों में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें, जिससे बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों में गिरेगा, तो अनावश्यक खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे, और खरपतवार नहीं होंगे तो श्रम की बचत होगी आपकी और कीड़े बीमारियां भी कम लगेंगे। नंबर दो कि जिस क्षेत्र में हमें सब्जी को लगाना है उस क्षेत्र की मिट्टी को हम गोबर की सड़ी खाद या केंचुआ की खाद या और भी कोई कंपोस्ट आपके पास है उसको खूब पर्याप्त मात्रा में, वैसे तो 10 टन कम से कम एक हेक्टेयर में डालना चाहिए, उतना नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको डालें। प्रति एकड़ 2 से 2.5 क्विंटल नीम की खली उस खेत में मिलाएं। ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास, कोई भी एक जैविक फफूंदनाशी को आप 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में 1 किलोग्राम मिला के 10-15 दिनों के लिए रख दें, और इसके बाद उसको खेत में उपयोग करें। एक जैविक कीटनाशी मेटाराइजम एनासोफिली, ये भूमिगत कीटों को, खासतौर से सफ़ेद ग्रब है या दीमक है या कटुआ इल्ली है या और भी कोई ज़मीन में रहने वाले ऐसे कीट हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए एक जैविक कीटनाशी हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी अगर किसान भाई उसको लेना चाहते हैं तो वहाँ से मिल जाता है। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा को हम ज़मीन में डालते हैं, जिससे ज़मीन की जो समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो हमने आपको बताया नीम की खली या ट्राइकोडर्मा, ये जितने भी भूमिगत फफूंद हैं उनको नष्ट करने में मददगार होता है। इसके बाद जब हम नर्सरी तैयार करें तो अच्छी हेल्दी नर्सरी तैयार करें, उसमें कूड़ा करकट ना हो, स्वस्थ पौधे तैयार करें, और उनको लगाने से पहले चाहे सीधा बीज हम बो रहे हैं तो उस बीज को, और या हमने पौध तैयार की है तो उस पौध की जड़ों को हम किसी भी एक फफूंदनाशी से उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ट्राइकोडर्मा से उपचार करें, और उसके बाद पीएसबी कल्चर से उसको उपचार करें, जिससे उसकी जड़ों का अच्छा विकास होता है, और उसके बाद उसको हम मेड़ बनाकर उसकी रोपाई करें, और इसके बाद लगातार हम उनमें दवाओं के स्थान पर शुरुआत से ही, जैसा हमने बताया रस चूसक कीटों की समस्या अगर है प्याज में, अगर खासतौर से रस चूसक कीटों की समस्या थ्रिप्स की होती है, उसके लिए नीले रंग के चिपचिपे प्रपंच आते हैं, और सफ़ेद मक्खी तथा माहू, इसके लिए पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच आते हैं, तो 50 से 60 चिपचिपे प्रपंचों को 10-10 फीट की दूरी पे हम खेत में फसल की ऊंचाई पर लगा दें, जिससे ये कीट है उनमें आकर्षित होकर उसमें चिपक जाते हैं और वो उनका प्रकोप हमारी फसलों में नहीं हो पाता। दूसरा एक लाइट ट्रैप आते हैं, लाइट ट्रैप से कर से हम 18 से 20 प्रकार के कीड़ों को हम निगरानी भी करते हैं और वो कंट्रोल भी करता है, तो एक लाइट ट्रैप एक

0: किसान भाई लगा ले, उसकी कीमत 2 से 2500 रुपए है और वो लंबे समय तक 10 साल भी खराब नहीं होगा, तो उसको हम लाइट ट्रैप को लगाएं। इसके बाद जो जैविक कीटनाशी है, हमें रासायनिक दवाओं का उपयोग करना है, अंतिम विकल्प के तौर पे करना है, लेकिन जैविक कीटनाशी जैसे ब्यूबिरा बेसियाना, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मिल जाता है, एनपी वायरस है, इन कीटनाशियों का हम स्प्रे करें। नीम का तेल या नीम आधारित कोई भी कीटनाशी जो 1500 ppm के हैं, उनका हम नियमित रूप से स्प्रे करें। गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं, 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र मिला के हम हर अल्टरनेट स्प्रे 3-4 दिन में स्प्रे करते रहें, जिससे फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप हमारी फसलों में नहीं हो पाता।
1: सब्जी फसलों में जैविक कीट नियंत्रण, इस विषय पर अभी आपको जानकारी दे रहे थे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। कृषि संकेत कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 7:10 होने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आज सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में सुनेंगे समस्याएं। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क से भविष्य में प्रतिवर्ष 10,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा, AI के दौर में अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। और प्रदेश में फिर स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम सक्रिय। रीवा और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जनविश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन CM मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिला विकास सलाहकार समिति बैठक में भी सहभागी होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ संवाद भी करेंगे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होंगे। सभी जिलों में भी मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर आयोजित किए जाएंगे। मंदसौर के गरोठ में आयोजित शिविर में आज अधिकारी गरोठ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर जन समस्याओं और शिकायतों का निराकरण करेंगे। उधर सतना में जिला स्तर के विभाग प्रमुख अधिकारी एक बस में बैठकर कलेक्ट्रेट परिसर से सुबह 10 बजे मझगवां के लिए रवाना होंगे। इंदौर जिले में भी विधानसभा क्षेत्र सांवेर के लसुड़िया परमार स्थित पंचायत भवन में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल पार्क में प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में यह संस्थान प्रतिवर्ष 2,000 युवाओं को विभिन्न तरह के कौशल पाठ्यक्रमों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। वर्ष 2026 में 3,000 युवा प्रशिक्षित होंगे। यह संख्या निरंतर बढ़ेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में अभिमुखीकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। वे युवाओं के लिए निरंतर अवसर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि आज AI के दौर में हम तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक है।
1: आज वर्तमान के दौर में इतने तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही और उस टेक्नोलॉजी में आपकी दक्षता के साथ आते जा रहे हैं। आज AI का जमाना, हम सब उसकी भी अभी बढ़ रहे, लेकिन हमारे जो परमात्मा

जी बौद्धिक क्षमता उसका विकास भी जरूर करते रहे, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्तिबद्धता से हर एक जगह अपने आप को सिद्ध करें। हमारे अपनी काम की गरिमा, आपका हुनर और आपकी

0: महामारी और पश्चिम एशिया संकट के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तालमेल वाले सिस्टम सरकार के काम करने के तरीके का स्वाभाविक हिस्सा होने चाहिए। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात की इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। यह फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले की जांच पूरी कर ली गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व वाले जांच आयोग ने 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी है। इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई संभावित है। आयोग ने जांच के दौरान इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों से दस्तावेज जुटाए थे। प्रभावित क्षेत्र के लोगों से भी लिखित बयान आमंत्रित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के साथ घटना के दौरान किए गए राहत और स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों की भी पड़ताल की गई। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट सूची 27 अगस्त को जारी होगी और 29 अगस्त को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों को 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। ट्रफ और डिप्रेशन के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सतना के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद चित्रकूट की गुप्त गोदावरी में पानी बढ़ गया है। पहाड़ का पानी गुफाओं के ऊपर से बहने लगा है। सुरक्षा को देखते हुए चित्रकूट नगर परिषद ने दोनों गुफाएं बंद कर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिले में नर्सरी से 5वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। वहीं रीवा में 15 घंटे की लगातार बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीहर नदी के तट से कुछ दूरी पर स्थित निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं डिंडौरी जिले में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। हॉकी में आज अम्स्टलफीन में FIH विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया है। दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन गोल करने में दोनों ही टीमें नाकाम रहीं। पूरे मैच के दौरान भारत का डिफेंस मजबूत रहा। भारत ने विशेषकर तनावपूर्ण दूसरे हाफ के दौरान इंग्लैंड के कई पेनाल्टी कॉर्नर रोके। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में लोक आस्था के प्रमुख केंद्र संत सिंगाजी धाम में संत शिरोमणि सिंगाजी महाराज का 467वां समाधि दिवस आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है, जहां दिनभर वार्षिक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदसौर और आगरमालवा में संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया गया। आगरमालवा में विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर CMHO कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम की शपथ दिलाई गई। ग्वालियर में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में मूक बधिर दंपति द्वारा शुरू किए गए इशारा कैफे का उद्घाटन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति विवेक रूसिया द्वारा किया गया। धार में रबी वर्ष 2026-27 के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन

सदस्यता और अग्रिम उर्वरक उठाओ अभियान का जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सरदारपुर विकासखंड के राजगढ़ में आयोजित किया गया। डिंडौरी में कलेक्टर रंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में मखाना विकास हेतु सेंट्रल सेक्टर स्कीम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में सुनेंगे समस्याएं। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में भविष्य में प्रतिवर्ष 10,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा एआई के दौर में अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। और प्रदेश में फिर स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम सक्रिय। रीवा और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की ये पहली फरमाइश इन श्रोताओं की तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आम्रपाली गायकवाड़, आवेशकार अनामिका प्रणीता गायकवाड़। जबलपुर मध्य प्रदेश से ये व्हाट्सएप संदेश हमें मिला अशोक सिंह, सुनीता सिंह, गुड़िया और वेदा सिंह का। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाती हैं लता मंगेशकर के स्वर में जुर्माना फिल्म से ये गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: मंचय गीत कार्यक्रम में अगली फरमाइश इन श्रोताओं की व्हाट्सएप पर ही ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, सिक्का रानी और आकाश कुमार, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मारावी, प्रमिला मारावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मारावी, आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ें दी किशोर कुमार और आशा भोंसले ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अगली फरमाइश सुनते हैं इन श्रोताओं के अनुरोध पर। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, ये व्हाट्सएप संदेश हमें मिला नेपानगर मध्य प्रदेश के श्रोताओं का। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा और गाव्या मल्होत्रा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी का। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं जंगली फिल्म से ये गीत मुकेश और आशा भोसले के स्वर में।

0: रितेश,
1: तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
3: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: और श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं के अनुरोध पर। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू, सपना सलोनी और साथ में पेंटर बाबू। ये संदेश हमें रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से मिला। आप सभी श्रोताओं का अनुरोध पूरा करते हैं और सुनते हैं माफ कीजिए, जुदाई फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ें दी किशोर कुमार और आशा भोंसले ने।

0: साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 7:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना, अतिशय परिश्रम के कारण बुखार आ गया और बेहोशी भी आ गई। मित्र अधिक घबराए, दूसरे डॉक्टर भी आए, पर जो रोगी उनकी बात माने नहीं, उनके लिए भला वो क्या कर सकते थे। सेठ अंबालाल और उनकी धर्मपत्नी दोनों नाडियाड आए। साथियों से चर्चा करने के बाद वे अत्यंत सावधानी के साथ मुझे मिर्जापुर वाले अपने बंगले पर ले गए। इतनी बात तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि अपनी इस बीमारी में मुझे जो निर्मल और निष्काम सेवा प्राप्त हुई, उससे अधिक सेवा कोई पा ही नहीं सकता। मुझे हल्का बुखार रहने लगा, मेरा शरीर क्षीण होता गया। बीमारी काफी लंबे समय तक चलेगी, शायद मैं बिछोने से उठ नहीं सकूंगा, ऐसा भी एक विचार मन में पैदा हुआ। अंबालाल सेठ के बंगले में प्रेम से घिरा होने पर भी मैं अशांत हो उठा और मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे आश्रम ले जाएं। और अब इससे आगे, मेरा अतिशय आग्रह देखकर वे मुझे आश्रम ले गए। मैं अभी आश्रम में पीड़ा भोग ही रहा था कि इतने में वल्लभ भाई समाचार लाए कि जर्मनी पूरी तरह हार चुका है और कमिश्नर ने कहलवाया है कि रंगरूट भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर भर्ती की चिंता से मैं मुक्त हुआ और मुझे शांति मिली। उन दिनों में जल का उपचार करता था और उससे शरीर टिका हुआ था। पीड़ा शांत हो गई थी, किंतु शरीर किसी भी उपाय से पुष्ट नहीं हो पा रहा था। वैद्य मित्र और डॉक्टर मित्र अनेक प्रकार की सलाह देते थे, पर मैं किसी तरह दवा पीने को तैयार नहीं हुआ। दो तीन मित्रों ने सलाह दी कि दूध लेने में आपत्ति हो तो मांस का शोरबा लेना चाहिए और औषधि के रूप में मांसादि चाहे जो वस्तु हो ली जा सकती है। इसके समर्थन में उन्होंने आयुर्वेद के प्रमाण दिए। एक ने अंडे लेने की सिफारिश की, लेकिन मैं इनमें से किसी भी सलाह को स्वीकार न कर सका। मेरा उत्तर एक ही था, नहीं। खाद्य का निर्णय केवल मेरे लिए शास्त्रों के श्लोकों पर अवलंबित नहीं था, बल्कि मेरे जीवन के साथ वो स्वतंत्र रीति से जुड़ा हुआ था। चाहे जो चीज खाकर और चाहे जैसा उपचार करके जीने का मुझे तनिक भी लोभ ना था।

जिस धर्म का आचरण मैंने अपने पुत्रों के लिए किया, स्त्री के लिए किया, स्नेहियों के लिए किया, उस धर्म का त्याग मैं अपने लिए कैसे कर सकता। इस प्रकार मुझे अपनी इस बहुत लंबी और जीवन की सबसे पहली इतनी बड़ी बीमारी में धर्म का परीक्षण करने और उसे कसौटी पर चढ़ाने के और उसे कसौटी पर चढ़ाने के अलव्य का लाभ मिला। एक रात तो मैंने बिल्कुल ही आशा छोड़ दी थी। मुझे ऐसा भास हुआ कि अब मृत्यु समीप ही है। अनसुईया बहन को खबर भिजवाई, वे आई, वल्लभ भाई आए, डॉक्टर कानून गो आए। डॉक्टर कानून गो ने मेरी नाड़ी देखी और कहा, मैं खुद तो मरने के कोई चिन्ह नहीं देख रहा हूं, नाड़ी साफ है, केवल कमजोरी के कारण आपके मन में घबराहट है। लेकिन मेरा मन ना माना। रात तो बीती किंतु उस रात मैं शायद ही सो सका होऊंगा। सवेरा हुआ, मौत ना आई, फिर भी उस समय जीने की आशा ना बांध सका। और ये समझकर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर बन सका उतनी देर तक साथियों से गीता पाठ सुनने में लगा रहा। कामकाज करने की कोई शक्ति रही ही नहीं थी, पढ़ने जितनी भी शक्ति नहीं रह गई थी। किसी के साथ बात करने की भी इच्छा ना होती थी, थोड़ी बात करने से दिमाग थक जाता था। इस कारण जीने में कोई रस ना रह गया था। जीने के लिए जीना मुझे कभी पसंद नहीं आ रहा था। बिना कुछ कामकाज किए साथियों की सेवा लेकर क्षीण हो रहे शरीर को टिकाए रखने में मुझे भारी उकताहट मालूम होती थी। तो अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। वाचक स्वर था जय शेखर का। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर

का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाश

0: आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवे शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: दोस्त हमीदा को नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के इस सागर केंद्र से बोल रही हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:00 बजने को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन

0: आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लिटोरों ने

0: चार दिनों में दो जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू एक टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टीटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिल और तनिषा कृष्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदले की राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है,

0: वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं उर्मिला पांडे से ये झूला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं नथु सिंह से ये वर्षा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी सागर से। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं घुमन प्रसाद कुशवाहा से ये लोकगीत।

श्रोता और लोक संगीत कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए उर्मिला पांडे, नथु सिंह, घुमन प्रसाद कुशवाहा और उनके संगी साथियों के गाए कुछ झूला गीत और वर्षा गीत। कार्यक्रम लोक संगीत आपने सुना आकाशवाणी सागर से। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं रूपक अगस्त क्रांति। आलेख है रमेश बख्शी का और प्रस्तुति बांके नंदन की।

0: राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो पहला पड़ाव है वो 1885 से लेकर 1905 तक का पहला पड़ाव है, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और पहली बार हिंदुस्तान की जनता ने अपनी जो राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं उनको कांग्रेस के मार्फत अभिव्यक्त किया। 1905 के बाद, वंग भंग के बाद और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व के उदय के बाद स्वराज्य की कल्पना तेजी से सामने आई।
1: स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
2: स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
0: ये दूसरा पड़ाव था। फिर रॉलेट कानून के खिलाफ गांधी जी ने जो अभियान छेड़ा 1919 में, उसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा अध्याय शुरू हो जाता है। इसको एक माने में गांधी युग कहा जा सकता है। उसमें 1920 का असहयोग आंदोलन भी आता है, 1930 का नमक सत्याग्रह भी आता है, 32 का सत्याग्रह भी आता है।
1: महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय।
0: इसी दौरान प्रांतीय स्वायत्तता के अंदर कई राज्यों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल बना दिए।
3: ये हैं समाजवादी चिंतक श्री मधुलिमय, जिन्होंने इतिहास के पृष्ठों, कथा सूत्रों और आजादी की लड़ाई के कुछ खास बिंदुओं को रेखांकित किया।
0: फिर भी और एक अध्याय बाकी था और वो अंतिम अध्याय था भारत छोड़ो आंदोलन का।
4: भारत छोड़ो आंदोलन,
3: क्विट इंडिया मूवमेंट,
1: 1942 की

0: सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। महायुद्ध ने साम्राज्यवादी ब्रिटिश ताकत को झकझोर कर रख दिया। दिसंबर 1941 में जापान धूम धड़ाके के साथ महायुद्ध में उतरा। जापानी सेना ने ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों के छक्के छुड़ा दिए। प्रशांत महासागर के अनेक ब्रिटिश और अमेरिकी अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के पैर उखड़ गए।
1: खबर मिली थी कि 7 मार्च 1942 को जापान ने रंगून को हथिया लिया।
0: अंग्रेज शतरंजी चालें चलने में माहिर थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने उन्हीं दिनों अपने एक वक्तव्य में कहा था,
2: भारत के लिए जो खतरा पैदा हो गया है उसे देखते हुए ये जरूरी लगता है कि आक्रमण से देश की रक्षा के लिए भारत के सभी वर्गों का संगठन किया जाए।
1: और ब्रिटिश सरकार ने एक नई चाल चली। सर स्टेफर्ड क्रिप्स को नियुक्त किया गया कि वो भारतीय नेताओं से बात करके रास्ता निकालें। 23 मार्च 1942 को चालाकी भरे वायदों का पुलिंदा लेकर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली आए। समझा जाता था कि मिस्टर क्रिप्स भारत के खैरखा हैं, हितैषी हैं, लेकिन क्रिप्स जो प्रस्ताव लेकर भारत आए थे वो न केवल भारतीयों के लिए अपमानजनक थे बल्कि उनमें साजिश थी देश को तोड़ने की, विभिन्न प्रांतों को अपना अपना निर्णय लेकर अलग अलग करने की।
0: कहते हैं कि क्रिप्स जब अपने प्रस्तावों के साथ गांधी जी से बात करने गए तो गांधी जी ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा था,
3: यदि भारत के संबंध में आपकी यही योजना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगले ही हवाई जहाज से ब्रिटेन लौट जाएं।
1: जवाहरलाल नेहरू ने उन प्रस्तावों के बारे में लिखा,
4: जब मैंने उन प्रस्तावों के बारे में पहली बार पढ़ा तो मेरा दिल बुरी तरह बैठ सा गया। ज्यों ज्यों मैंने उन प्रस्तावों को पढ़ा मेरी निराशा बढ़ती गई।
0: भारतीय नेता निराश थे। क्रिप्स योजना को भारत विरोधी मान रहे थे और क्रिप्स नेताओं से अलग अलग मिल रहे थे, पर वो जहर की मीठी गोलियां भारतीयों के गले उतार नहीं सके। अपने वक्तव्यों में झुंझलाहट उड़ेलनी शुरू की और लगभग 2 सप्ताह बाद क्रिप्स साहब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए।
1: क्रिप्स योजना असफल हो गई, लेकिन भारत पर सुदूर पूर्व से जापानी आक्रमण के खतरे मंडराते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर रहकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ लोगों ने नेताजी के भाषण भी विदेशी रेडियो से सुने। जन सामान्य के मन में बेचैनी थी, देश के नेता उलझन में थे, लेकिन महात्मा गांधी देश की जनता की नब्ज पहचानते थे। वे लगातार लिखते रहे, जनता को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाते रहे। आजादी मिलने के आसार नहीं थे और हमले का खतरा बढ़ता जा रहा था।
5: उस समय स्थिति यह थी कि द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। अंग्रेजों की भारी शिकस्त पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई थी और जापान की सेना हिंदुस्तान की सीमाओं पर आई थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का राज जाए और उसकी जगह पे जापानियों का राज आए, इसलिए वो चाहते थे कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, लोगों में आत्मचेतना पैदा करनी चाहिए, उनको हर तरह के आत्मत्याग के लिए उनको तैयार करना चाहिए। भारत छोड़ो नारा देने के पीछे गांधी जी की यही भावना थी। 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित हुआ। उस दिन मैं ग्वालियर टैंक मैदान के ये ICC की सभा में एक प्रेक्षक के रूप में मैं उपस्थित था और गांधी जी का अंतिम भाषण, जोशीला और प्रेरणादायक भाषण मैंने खुद अपनी कानों से सुना था। पहले उन्होंने हिंदी में भाषण किया और बाद में अंग्रेजी में किया।
0: अंग्रेज भारत की वास्तविक सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण में और देर

0: नहीं करनी चाहिए। विचार मंथन होता रहा और 7 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अभूतपूर्व महाअधिवेशन हुआ। हजारों हजार लोगों से पंडाल खचाखच भरा था। समिति ने ब्रिटिश राज की तुरंत समाप्ति के लिए 8 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पास किया,
1: भारत छोड़ो प्रस्ताव,
2: क्विट इंडिया रेजोल्यूशन।
0: आह्वान के गांधी जी पुरोधा थे, गुरु थे और दूसरे सब साथी सहयोगी। भरी सभा में रात 10 बजे महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, आप इसे हृदय पर लिख लें और हर श्वास के साथ उसे अभिव्यक्त होने दें। मंत्र है, करो या मरो, डू और डाई। हम या तो भारत को स्वतंत्र करा के रहेंगे या इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हुए मर जाएंगे।
0: उन्होंने अपने भाषण के अंत में कुछ इस प्रकार कहा था,
2: अब की जो लड़ाई छिड़ेगी वो सामूहिक लड़ाई होगी। हमारी योजना में गुप्त कुछ भी नहीं है, हमारी तो खुली लड़ाई है। हम एक साम्राज्य से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लोग छिपकर कोई काम ना करें, जो लोग छिपकर काम करते हैं उन्हें पछताना पड़ता है।
3: महात्मा गांधी की जय। महात्मा

0: यहीं से शुरू हुई संघर्ष कथा, गोरों का भारी सरदर्द और व्यथा।
1: बंबई में करो या मरो के नारे और भारत छोड़ो प्रस्ताव के साथ ही अंग्रेजों ने जेल भरना शुरू कर दिया। तमिलनाडु के वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी श्री एमपी शिवज्ञानम बताते हैं,
2: 1942 अखिल इंडिय कांग्रेस कमिटी बंबई कूड़े बोद मौलाना अबुल कलाम आजाद तलेवराग इंदार कांग्रेस।
3: गांधी जी ने कहा था कि मैं यह आंदोलन वायसराय साहब से मिलने के बाद शुरू करूंगा, उसके पहले नहीं। वे उन्हें एक अवसर देना चाहते थे। गांधी जी की यह नीति थी, लेकिन आधी रात को गांधी जी कैद कर लिए गए। सरकार पहले से सतर्क हो गई। गांधी जी, कार्यकारिणी समिति के सदस्य आदि सबको रातों रात कैद कर लिया गया। सुबह हुई तो अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में यह समाचार छपा। देश भर में कांग्रेस के कार्यालय बंद कर दिए गए और खादी की दुकानों तक को भी नहीं छोड़ा गया।
2: तेरह तारीख
3: को मैं कैद कर लिया गया। मद्रास से वेलूर ले जाया गया तो वहाँ श्री कामराज, सत्यमूर्ति अय्यर, टी प्रकाशम जी, उमदूर रामस्वामी रेड्डियार आदि पहले से ही जेल में मौजूद थे। कुल वहाँ 41 लोग थे।
2: आदिले 30 தேர்ந்தெடுத்து அமராவதி சிறைக்கு கொண்டு போய் வைத்தார்.
4: 9 अगस्त की पौ फटने से पहले महात्मा गांधी सहित अन्य चोटी के नेता गिरफ्तार कर लिए गए।
5: उसी रात्रि को गांधी जी को तो वो ले गए वहाँ पर पूना के अंदर, वो आगा खां का कोई का महल है किसका है, और बाकी लोगों को कैद करके वो ले गए अहमदनगर जेल में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब गए, राजेंद्र बाबू गए, सरदार पटेल गए, डॉक्टर हरिकृष्ण।

0: मेहताब गए, जवाहरलाल जी गए, तो इन सबको ले गए। लेकिन कहाँ ले गए हम लोगों को तो कुछ भी पता नहीं था। केवल इतना ही पता था कि पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े लीडर हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, सबके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस वक़्त सब जगह पर नए लीडर पैदा हुए, और सबसे बड़े जो लीडर पैदा हुए वो जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने बहुत बड़ा उस वक़्त सब बात को संभाला। अच्युत पटवर्धन थे, रामनोहर लोहिया थे, इस प्रकार के जो लोग थे वो आगे आ गए, और उन्होंने ही फिर ये नारा दिया, लोगों को इकट्ठा किया, प्रेरणा दी, और उस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। लेकिन बहुत जगह छोटे छोटे लोग, जिनको आप कहते हैं हमारे जैसे लोग, वो भी अपने तौर पर काफ़ी बड़े काम कर गए। हमारे कितने ही साथी हैं बलिदान हो गए, जिन्होंने मृत्यु को आलिंगन कर दिया, परवानी की, घर बार छोड़ दिया बिल्कुल, और मौत से लड़ गए बिल्कुल।
1: 79-80 वर्ष के वयोवृद्ध डॉक्टर मदन मोहन चोपड़ा तब लाहौर में रहते थे, अब दिल्ली में रहते हैं। अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समिति के मुख्य सचिव हैं।
0: असल में बात यह है कि उस वक्त मुल्क के अंदर, देश के अंदर दो प्रकार की विचारधारा चल रही थी। एक तो गांधी जी की विचारधारा, जो अहिंसा से लगे हुए लोग थे, लेकिन दूसरी तरफ वो क्रांतिकारी लोग थे जो अंडरग्राउंड होकर के काम कर रहे थे। और इस आह्वान के बाद डू एंड डाई जब उन्होंने कह दिया कि मरो या करो, या तो आज़ाद हो जाओ और नहीं तो अपने आप को मिटा दो, ये जो उनकी एक भावना आई, उससे हम दोनों लोग मिल गए। कि हम लोगों ने ये सोचा कि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ना है, और इसलिए बहुत काम ऐसे हुए जो पहले किसी आंदोलन में नहीं थे, जैसे तार घरों को जला देना, जैसे पुलिस स्टेशनों पर हमला कर देना, जैसे झंडे उखाड़ करके अंग्रेज़ों के जहाँ जहाँ झंडा है यूनियन जैक उसको निकाल करके भारत के हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को लगा देना, ये काम इस आंदोलन में ही हुआ। और ऐसा हुआ भाई साहब, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि जिसकी मिसाल शायद अब कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। एक आदमी को गोली लगती है, झंडा लेके जा रहा है लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, वो छोड़ देता है, गिर जाता है तो दूसरा जाता है, उसकी का तीसरा जाता है, लेकिन झंडा लगा के आता है, चाहे कितने बलिदान हो जाता है, और नीचे लोग जय जयकार कर रहे हैं।
2: मेरा नाम चंद्र प्रकाश भारद्वाज है। 16 बरस की उम्र में मैं समस्तीपुर में था, और इस मूवमेंट में 9 अगस्त को मैंने भी बहुत भाग लिया, और समस्तीपुर में हज़ारों पुलिस वालों के, आर्म पुलिस वालों के बीच में से मैंने SDO कोर्ट में अकेले ही तिरंगा झंडा लड़ाया, जिसका उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी झंडा लगाएगा उसको गोली से मार दी जाएगा, लेकिन मैंने झंडा लगा दिया। उसके बाद मुझे सज़ा हुई और मैं जेल में चला गया,

0: रोज विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वहाँ शाम को झंडा प्रार्थना होती थी जेल के अंदर। उसी समय उसी जेल में चौधरी चरण सिंह थोड़े दिनों में आए थे।
1: श्री उपेंद्र वाजपेयी तब छात्र थे, अब एक अनुभवी पत्रकार हैं।
0: यह अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र या एकदम से उठा हुआ आंदोलन नहीं था, यह पिछले तमाम वर्षों से दशकों से चले आए आंदोलन की परिणति थी। तो कोई भी आंदोलन किसी भी देश में 100% लोगों को शामिल नहीं करता है और न कभी किसी आंदोलन में 100% लोग जेल जाते हैं। किस हद तक वो लोग जो जेल नहीं गए हैं उनकी भी सहानुभूति जेल जाने वालों के साथ है या आंदोलनकारियों के साथ है, यह बड़ा भारी टेस्ट है या यह बड़ी भारी कसौटी है ये जानने के लिए कि वह आंदोलन सचमुच लोक आंदोलन है कि नहीं है। उस दृष्टि से सन 1942 का आंदोलन सचमुच लोक आंदोलन था।
2: वो एक लोक आंदोलन था जो आंधी की तरह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर कहीं फैला था। शिक्षित अशिक्षित, बच्चे बूढ़े, पुरुष महिला, किसान मजदूर सब शामिल थे उसमें।

0: होशंगाबाद मध्य प्रदेश के श्री राजेंद्र अनुरागी बतलाते हैं।
1: मैं तो 7th क्लास में पढ़ता था उन दिनों गवर्नमेंट हाई स्कूल में, 14 मील पर बाबई, ये पचमढ़ी रोड पर है। वो बाबई गांव क्या था, वो तो छावनी बनी हुई थी। बाबई के हर घर में एक ना एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है अभी भी। अच्छा, माखनलाल दादा का जहाँ तक था, उनके गीत वो जो कैदी और कोकिला और वो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्याली को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं। 1942 की अगस्त क्रांति में, भारत छोड़ो आंदोलन में, दादा माखनलाल पूरी तरह सक्रिय थे। वो तो वागीश थे। दादा माखनलाल की कलम जितनी जोरदार थी, वाणी उससे कई गुनी जा। वहाँ खंडवा में एक मीटिंग हो रही, बड़े हॉल में मीटिंग हो रही थी, और जनता को इस प्रकार खुलेआम डांटते हुए दादा माखनलाल को देखा मैंने, ललकारते हुए देखा उनको।
2: कोई ललकारता था, कोई नारे लगाता था, कोई झंडे फहराता था। क्रांति की ज्वाला फैलती जाती थी। पोस्टर, हैंडबिल और गश्ती चिट्ठियां भी एक दूसरे की प्रेरणा बनती थी। प्रसिद्ध समाज सेविका नागपुर की ताराबेन मशरूवाला के शब्दों में,
3: तसा घरातले सगळेच लोक स्वातंत्र्य लढ्यात असल्यासारखेच होते। माझी आई सुद्धा म्हणजे माझ्या घरात तेव्हा।
4: उस समय मेरे दो भाई बंबई की जेल में थे। बड़े भाई भी बाद में जेल में चले गए, और घर में मैं और मेरी छोटी बहन, मेरा एक विकलांग भाई और हमारी माँ केवल इतने ही सदस्य थे। फिर भी हम घर से बुलेटिन निकालते थे, पोस्टर्स निकालते थे, उनमें लेख होते थे, बड़े बड़े नेताओं के कथन होते थे, सरकार का साथ मत दो कुछ आदेश निर्देश होते थे। वो बुलेटिन हम लोगों के घर घर पहुंचाते थे।
2: नारे और बुलेटिन में भारत छोड़ो और करो या मरो दो बातें प्रमुख थी। कटक में काम कैसे शुरू हुआ, उसकी एक झलक अन्नपूर्णा मोहराना के शब्दों में।
5: हमारे प्रांत के जो सदस्य थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, श्रीमती मालती चौधरी, वे बम्बई से मद्रास होकर के उड़ीसा चली आई। उनके पास से हमको एक पुर्जा मिला जिसमें लिखा था डू और डाई, जिसके ऊपर लिखा था करो या मरो। और फिर उसमें गांधी जी का भाषण का थोड़ा सा उसमें नमूना था कि अब तुम सोचने लगो कि तुमसे आज़ाद भारत के नागरिक हो, गांव गांव में मरण सेना बनाओ, मरण सेना वाहिनी बनाओ, जो लोग मरने के लिए तैयार हो जाए आज़ादी के लिए, इस तरह का काम शुरू करो। फिर हमने गांव गांव गांव में घूम करके सभाएं की और संगठन किया, मरण सेना वाहिनी बनाई।
0: कुछ यथावत घटनाएं, व्यवस्थाएं, प्रताड़नाएं, यातनाएं कटक के ही श्री बैकुंठनाथ मोहंती के शब्दों में।
6: बड़े बड़े नेता सब अहमदनगर दुर्ग में थे। हमारे महताब बाबू भी थे, हरिकृष्ण महताब, और मुझे गिरफ्त करके कटक जेल में रखा, कटक जेल में रखा गया। वहाँ गोपम चौधरी, लवकृष्ण चौधरी और मारुती चौधरी, सरला देवी, रमा देवी, भागीरथी महापात्र, नित्यानंद कानूनगो, जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे उड़ीसा के, ये सब थे। हम कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अनुगुल जेल में गए, अनुगुल से ब्रह्मपुर आए। मैं जब ब्रह्मपुर आया था, रास्ते में हमको बहुत मार हुआ। हरगिरी तब कटक का पुलिस साहब था, तो वो हमको बहुत पीटा, बहुत मार दिया।
2: ।1942 के अंत तक कोई 60,000 नरनारी जेल में ठूस दिए गए थे। जेलों में उन्हें यातनाएं दी जाती थी और जेल के बाहर आंदोलनकारियों पर अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे। अंग्रेजी पुलिस लाठियां चलाती थी, गोलियां बरसाती थी। निहत्थे आंदोलनकारियों पर घोड़े दौड़ा दिए जाते थे।
0: हैदराबाद के श्री काटम लक्ष्मी नारायण,
7: जननी जन्म भूमच्छ स्वर्गादपि गरियसी। जेल की यातनाएं बहुत थी। जानवरों को जैसे खिलाते हैं, उस मानिंद हमको खिलाया जाता था। बकेट में जो है दाल लाकर डाल दिया जाता था, और रोटियां फेंकते थे, कच पक्के रोटियां जो है वो फेंकते थे, दो रोटियां बस उसको खा लेके हम रहते थे।

0: वे से शाम तक हम काम करना पड़ता।
1: और न जाने कैसी कैसी अमानुषिक यातनाएं दी जाती थी, कैसे जुल्म ढाए जाते थे। लेकिन इंकलाब की जो आग फैली वो निरंतर बढ़ती ही गई। हैदराबाद के ही श्री हरीश चंद्र हेड़ा कहते हैं,
2: सारे हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ी आजादी की लहर उठ गई। सैकड़ों लाखों लोग गिरफ्तार हुए, जेल गए। बहुत से लोगों ने पुलिस के जुल्म के खिलाफ, पुलिस का जवाब पत्थरों से देना शुरू, रेलों को चलना बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी। पुलिस थाने या स्टेशंस इनको जलाना शुरू किया, ये भी बहुत बड़े प्रमाण पर हुआ।
3: आज़ादी के आंदोलन की उस बेमिसाल मशाल की लौ पूरे देश में फैली थी। श्री मधुलिमय के शब्दों में,
4: आप लोग जानते हैं कि आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार था, और बम्बई भी था। साथ साथ सातारा में एक प्रति सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में एक स्थिति बन गई थी। बंगाल में मेदिनीपुर में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और कई क्षेत्रों में अंग्रेजों की हुकूमत लगभग समाप्त सी हो गई थी।
1: रांची के श्री राम प्रसाद,
5: तो हम लोगों को जो बुझाया, कहीं भट्टी तोड़ देना, फाटक तोड़ देना और थाना पर कब्जा करना, यही हम लोगों को हुआ। कहीं नदी में जो पुल था उसको काट करके कर देना कि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आ सके, और हम लोग एक सप्ताह तक वहाँ पर अंग्रेजों को अपने कोई जगह पर नहीं पहुँचने दिया।
1: रांची के ही श्री रति टाना भगत से जब ये सवाल किया गया,
6: आजादी की लड़ाई में आपने क्यों भाग लिया?
7: ये प्रेरणा जैसे मिली हमको, जैसे हमारे बाप दादा जैसे पहले टाना पढ़ते थे कि तिनसिंगना में जा कर के टाना बाबा टाना, टान टून टाना, कांस पीतर मना, टोकना में खाना, राजा जिमीदार हट जाए, अंग्रेज हट जाए, हम लोग का राज हो, हम लोग का पाठ हो, हम लोग आजाद से कमाएंगे खाएंगे।
1: श्री सर्वानंद मिश्र बतलाते हैं,
8: थाल प्रगाना में लाल कुर्ता के लोग और मैं और मेरे लोग एक महीना कम से कम महीनों तक वहाँ सरकार को उखाड़ फेंका था।
3: सच तो ये है कि पूरे देश में आजादी पा लेने की ललक थी।
1: कविवर दिनकर की ये पंक्तियाँ हमेशा याद रहेंगी।
9: सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
3: और आजादी की आतुर भारत की जनता ने वो कर दिखाया कि अंग्रेजों की जमी जमाई सत्ता हिल गई। ब्रिटेन का सिंहासन डगमगा गया। अगस्त क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया।

9 अगस्त 1942 को जो जंग छिड़ी उसका स्वाभाविक परिणाम सामने आया 15 अगस्त 1947 को। गुलाम भारत आजाद हुआ।

अभी आप सुन रहे थे रूपक अगस्त क्रांति, आलेख था रमेश बख्शी का, प्रस्तुति बांके नंदन की। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: लाते जाएंगे और भूमि को उठेगा दिखा कर खिलखिलाते जाएंगे।
1: फिल्म का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीयूष मिश्रा की आवाज थी।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी मां सगुना अभिनेत्री थी। परिवार

के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं, इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका

बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आ रहा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थी और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये गाना

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

0: 1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।
1: ओए बुड्ढो लंबो लंबो

दोस्तों, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकु कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।

0: तो दोस्तों, ये था आज के फनकार कार्यक्रम। केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। छतरपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना, उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया गया। जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड

छतरपुर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार थे। मुख्य अतिथि ने कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के साथ खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का प्रसारण किया गया। समारोह में श्री अहिरवार ने तीन लोकतंत्र सेनानियों और दो भूतपूर्व सैनिकों का शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला से सम्मान किया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। छतरपुर जिले के केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ग्राम सुखवाहा के मैनारी में विस्थापित परिवारों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन विश्वास कार्यक्रम के तहत बीते 18 अगस्त को मैनारी में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और विस्थापित परिवारों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सुना गया। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा मुर्गी पालन के लिए 25 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही भैंस पालन के लिए 11, बकरी पालन के 2 और पशु शेड के निर्माण के लिए 2 आवेदन प्राप्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 36 व्यक्तियों का परीक्षण कर दवा वितरित की गई। इसके साथ ही आयुष विभाग द्वारा 42 व्यक्तियों को दवा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 91 आवेदन में से 88 आवेदन पात्र पाए गए, जिन्हें स्वीकृत किया गया। वहीं बीपीएल सूची में नाम जोड़े जाने के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 व्यक्तियों का नाम जोड़े जाने की कार्रवाई की गई और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। पीएम आवास के लिए 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर समस्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। ग्रामवासियों से विस्थापन के संबंध में चर्चा के दौरान विस्थापितों द्वारा ग्राम साड़ा और ग्राम भरतला में रहवासी प्लाट उपलब्ध कराने के लिए सहमति बनाई गई। छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीणा ने हाल ही में छतरपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता और सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जिला अस्पताल के सभी तलों पर भ्रमण कर ओपीडी रूम, एसएनसीयू रूम, एएनसी वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एनआरसी और पीडियाट्रिक वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सफाई इंचार्ज को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों के अटेंडरों की बैठक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, साथ ही बेंच लगाकर उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। बारिश से अस्पताल में पानी लीकेज पाए जाने पर उसको तत्काल तरपोलिन शीट लगाकर सही करने के निर्देश दिए गए। जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विकास एवं परीक्षा परिणामों में सुधार के उद्देश्य से 19 उत्कृष्ट छात्रावासों में विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नमः शिवाय अर्जरिया की अध्यक्षता में 12 अगस्त को आयोजित बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षकों का चयन किया गया। छतरपुर जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत छतरपुर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में नगर पालिका से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसे छतरपुर विधायक ललिता यादव ने रवाना किया। बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने बिजावर में तिरंगा यात्रा निकाली, जबकि राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने बमीठा से खजुराहो तक लगभग 100 युवाओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। वहीं पत्रकार संगठन के सदस्यों ने भी छतरपुर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। पूरे जिले में तिरंगे को लेकर एक उत्साह का वातावरण सप्ताह भर देखने को मिला। वहीं अब बात करते हैं जिले के मौसम की। छतरपुर जिले में इस वर्ष सामान्य बारिश हो रही है और जून तथा जुलाई माह में बहुत कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन अगस्त माह में बारिश ने जोर पकड़ लिया है। अभी तक छतरपुर जिले में 568 मिलीमीटर यानी कि 22.4 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में 1083.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो कि 42 इंच थी। इस वर्ष सर्वाधिक बारिश जिले के गौरीहार विकासखंड में 803 मिलीमीटर और बिजावर में सबसे कम 433 मिलीमीटर दर्ज की गई है। किसानों ने अपने खेतों में ज्यादातर मूंगफली, सोयाबीन, उड़द और तिल की फसल लगाई है। कृषि विभाग के मुताबिक फसल के लिए अभी तक यह अच्छी बारिश साबित हुई है। जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने शामिल होकर कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ये समरसता संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंचकर जन जन को संत रविदास जी के आदर्शों को पहुंचाने का काम करेगी। कार्यक्रम में छतरपुर विधायक ललिता यादव और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। छतरपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गुलदस्ता कार्यक्रम में कुछ गैर फिल्मी गजलें और कव्वालियाँ। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गजल डॉक्टर बशीर बद्र का

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में शेख अदम अबूवाला का ये कलाम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: गुलदस्ता कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं ए हरिहरन के स्वर में इब्राहिम अश्क का ये कलाम।

श्रोताओं, आकाशवाणी सागर से गुलदस्ता कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुछ गजलें, आइए अब सुनवाते हैं ये कव्वाली। जानी बाबू कव्वाल के स्वर में ये कव्वाली है और ये मुकाबला आपको सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं।

इस बात से इनकार नहीं। फिर भी ये जाने अदा

श्रोताओ, इस कव्वाली के साथ ही गुलदस्ता कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सागर है। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकारें चंचल का नमस्कार। श्रोताओ, कार्यक्रम में शामिल होंगी व्हाट्सएप फरमाइशें। सबसे पहली ये फरमाइश है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की। साथ में इसी गीत को सुनना चाहा है गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी का। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है बेताब फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ें दी हैं शबीर कुमार और लता मंगेशकर ने। आइए आप सभी के अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपके पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अगली फरमाइश इन श्रोताओं की, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला रोशनी मनवर, चेतन विशाल, बेबी प्रियांशी, मोर टक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मंजिल फिल्म से ये गीत किशोर कुमार के स्वर में।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम में अब अनुरोध आया है इन श्रोताओं का। सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन कैसरुद्दीन, जिला पीतल नगरी ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी सागर से आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगली फरमाइश इन श्रोताओं की, ये व्हाट्सएप संदेश हमें लिख भेजा मेन मार्केट पोस्ट सोरई ललितपुर उत्तर प्रदेश के श्रोताओं ने। संतोष नामदेव, अभय नामदेव, अनिल, अजीत, अनीता, ज्योति, संजना और भारती नामदेव दुर्गा कॉलोनी हांसी से इस गीत को सुनना चाहा है। राजू मिंगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं आप आए बाहर आई फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने।

अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं के अनुरोध पर। भूड़ चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका और आकृति सिंह, साथ में वंशराज। यमुनापुरम बुलंदशहर से धीरेंद्र सोलंकी, सुनीता, निष्ठा सोलंकी, शौर्या, मोन सोलंकी। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरदीन, फारिया और ताहिरा। एक और संदेश है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश के इन श्रोताओं का। माननीय माफ़ कीजिए मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और आदलपुरा गोंगावा से संजय वामनिया, माया, कान्हा और कृष्णा, आप सभी की पसंद पर। सुनते हैं संग्राम फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमसे की और ये पत्र द्वारा फरमाइश हमें भेजी पुरबियाऊ काली तिगड्डा सागर के ये श्रोता हैं, श्याम रैकवार, विक्रम बादल, विनय लक्ष्मी, खुशबू, भूमिका, कीर्तिका, टक्कू, वंदना और विराज। एक व्हाट्सएप पर भी संदेश प्राप्त हुआ इसी गीत के लिए, सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सन्ना, सदानंद, विराज, स्वीट अंजुमन और बेबी ओबी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं फिल्म आया सावन झूमके।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद संपन्न करने की दीजिए चंचल को अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी सागर है। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील

0: महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममताबाई वर्मा का।
1: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
1: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
1: जी
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
1: जी
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
1: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
1: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
1: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी।
1: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
1: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
1: वो वही खाता जो मुर्गियां खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
1: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
1: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
1: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
1: जी।
0: पता है उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
1: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
1: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
1: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओ, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
1: जी।
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
1: जी।
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओ, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
1: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओ, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे

0: तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: कार्यक्रम पानी रे पानी, इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।

0: हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी, क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
6: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
6: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक,
1: बताओ।
6: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ

0: देखें तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
2: यदि बंद ना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छे।
3: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
0: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
3: अच्छा अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
4: मेरे पास
1: बहुत बड़ी है।
3: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना, बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
4: जल।
3: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरे मन की बात कह दी। तो, चलिए
3: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। आप भी कहिए।
3: हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो अब तुम्हारी बारी है।
5: जीवन सुखद बनाएंगे,
1: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में

किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर

0: इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दूए मुअल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
1: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
0: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
2: जी आदाब, बजा लाता हूँ जनाब, मोहानी की खिदमत में।
1: अरे आप, आदाबर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
2: जी जी, शुक्रिया।
1: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
2: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
1: जी बस।
2: जी,
0: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
1: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
2: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं। ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
2: मोहानी साहब
1: जी,
2: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
1: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
2: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
2: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
2: या खुदा,
1: नौश फरमाइए मियां,
2: लाइए
1: खाइए।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
4: इरशाद ग्रामी
1: है, मश्के सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी।
5: वाह क्या बात है, है मश्के सुखन जारी
1: चक्की की मशक्कत भी।
5: वाह,
1: एक तुरफा तमाशा है

0: हसरत की तबीयत भी
1: एक तरफ तमाशा है, हसरत की तबीयत क्या क्या।
2: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
1: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
3: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
1: अरे मोहानी साहब, आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
0: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
3: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
0: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
1: क्या
0: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
3: अरे मार साहब,
0: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशआर सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
1: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो दें।
0: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
3: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
0: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
2: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
1: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
3: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
1: आपने कुछ खाया ही नहीं।
3: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
1: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
0: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शब्बा खैर।
0: शब्बा खैर।
3: बला की ठंड है,
0: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है।
3: नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है।
0: तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
3: अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
2: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये

0: देसी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
1: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
0: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: बारूद एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन का म्यूजिक था और उन्होंने इसे लिखा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी

0: बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी के अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।
1: यादें फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी की आवाजों में प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटी सी अंतराल का।

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया दिना।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आनंद मिलन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा उपाध्याय, आज आपके साथ इस सफर में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपके गीतों की लिस्ट में देख चुकी हूँ कमेंट बॉक्स में जाकर, और भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं ये भी मैं देख रही हूँ, और देखते हैं कि आपके ये गीतों की लिस्ट या शब्द हमारे गीतों से कितने मिलते जुलते हैं। और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीतों को, पसंदीदा गीतों को कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें।

तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। और जिन श्रोताओं ने वो टेक्स्ट या इबारत नहीं पढ़ी है अब तक, हम उन्हें एक बार फिर से पढ़कर सुना देते हैं। इबारत इस प्रकार है, शाम का मौसम कुछ बदला बदला था। कई सालों बाद शहर में सावन इतनी खूबसूरती से आया था। खिड़की के पास बैठी एक लड़की बारिश को देख रही थी और जाने क्यों आज फिर उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी। सुनिए, कुछ कहिए ना। सालों पहले इसी मौसम में एक अजनबी उससे मिलने हसीन वादियों में आया था। दोनों घंटों बारिश में भीगे थे, चांद को देखते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। उसने कहा, तुम्हें पता है ये मौसम तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। फिर एक दिन उस परदेसी को दूर, बहुत दूर जाना पड़ा। अब बस इंतजार उसका साथी बना। हर सावन में वही राहें, वही बरसात और वही शाम, वो ही उसके साथी थे। उसे उसकी याद दिलाते। आज भी बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, लेकिन अब के सावन में जी डरे, बेचारा दिल क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसे देखा, बस ये कहा, अब की तो रास्ता भूल गए, लेकिन अब कहीं ना जाना। बहुत प्यार से उसने कहा, मैं चांद चुरा कर तो नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हारा इंतजार जरूर अपने साथ लेकर लौट आया हूं। तो साथियों, ये थी इबारत। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: तुम्हारी कसम टक मकाए से हम हैं। नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
0: सुनिए

ये गीत अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अमित खन्ना ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। साथ ही आपके खूबसूरत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत उस इंतजार, उसी मोहब्बत और उस विश्वास की कहानी है जहां बरसों की दूरी भी दिलों के रिश्तों को कम नहीं कर पाती है। हालांकि संदेश बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सभी के संदेश शामिल हो, इसीलिए कुछ पंक्तियां ले रही हूं। हमारे दूसरे श्रोता कहते हैं कि विरह प्रेम की वो निशब्द ऋतु है जिसमें स्मृतियां ही सहचर बन जाती है। प्रिय की अनुपस्थिति में हर आहट उसका आभास देती है। जब बरसों बाद दो निगाहें मिलती है तो लगता है जैसे सारी तन्हाइयां एक पल में सिमट गई है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सावन की हर बूंद किसी पुराने खत का भीगा हुआ अक्षर हो। बरसों का इंतजार, वही रास्ते, वही शामें और किसी की आवाज की बची हुई गर्माहट सब मिलकर दिल के उस कोने को फिर से भिगो देते हैं जहां मोहब्बत कभी विदा हुई ही नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में सावन को हमेशा श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी कि वियोग और संयोग से जोड़कर देखा गया है। कथा की शुरुआत में नायिका का खिड़की के पास बैठना और बारिश की बूंदों के साथ पुरानी स्मृतियों का उभरना, और काफी अच्छी तरीके से इन्होंने हमारे इस इबारत के बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का महीना तो है, ये जाहिर है, लेकिन गीत भी वैसे ही बजेंगे और हम कितनी भी बार ये गीत सुन लें लेकिन मन नहीं भरता है, तो इसीलिए बारिश नहीं है तो भी धूप के साथ हम आनंद उठाएंगे इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हालांकि सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन सुरीला सफर में पूरे माह अलग अलग विषय पर मेला लगा है। कभी झूला, विरह, इंतजार, बारिश की फुहार, खाना पकौड़ी आदि, बहुत मजा आता है। और सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का ये अंदाज बहुत ही निराला है जो कि हम श्रोताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मोतियों की तरह पिरो कर रखता है। सच में जिंदगी में सावन की बूंदे की तरह छम छम ये कार्यक्रम रंगारंग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों का। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी। फिलहाल हम एक गीत सुनवाने वाले हैं और आप सब ने उसका जिक्र किया है अपने कमेंट में। वो बहुत ही प्यारा गीत है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं और उसके बाद हम आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो अनुभव है वो साझा अगर आप हमसे कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इबारत लिखी है कि एक शाम वो मौसम, इस तरह का अगर कुछ आपको अपना अनुभव शेयर करना है, लिखना है, लिखें बहुत ही कम शब्दों में ताकि हम शामिल कर पाएं। चलिए इस प्रोग्राम के दूसरे

से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज। सुरीला सफर है और आपके संदेश हम तक

इरफानी जी के गुफा पहुंचे थे और इस तरह से मौसम का मजा लेते हुए जब वापसी में आ रहे थे तो लैंडस्लाइड होते हुए देखा, तेज बारिश, पत्थर गिरते देखे और यात्रा अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, बारिश जहाँ बहुत खूबसूरत लगती है, वहीं अगर अति हो जाए किसी चीज़ की तो परेशानी भी देती है। तो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ सही मात्रा में, सही जगह, सही समय सही लगती है, और अगर वो ज़्यादा हो जाए, अति हो जाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो ज़रूर देती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी की तरह बरसात भी हमें काफी दिनों से तरसा रही है और विविध भारती के सुरीले सफर में तो पिछले कुछ दिनों से गीतों की बौछार, सावन लगातार छाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, हम भी आपके साथ हैं इसमें। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं ये जो गीत है, इसमें वाद्य यंत्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, जहाँ शब्दों की गहराई उभर कर आती है और इसीलिए ये आवाज़ की ताजगी, थोड़ी सी हिचकिचाहट इस गाने के जो तरीके में चार चांद लगा देती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना और बिल्कुल सही तरीके से इस गाने के बारे में लिखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन की भीगी रातें इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से काट कर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता, बल्कि बारिश की चादर में लिपटकर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा रेडियो सेट। प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतजार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतजार में, किसी के आने के इंतजार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है, लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतजार अच्छा लगता है। अगर यही इंतजार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए, इंतज़ार क्या आपने भी किसी को करवाया है, लंबा इंतज़ार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतज़ार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतज़ार करना या करवाना दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतज़ार करवाया हो या आपका किसी ने इंतज़ार किया हो बहुत लंबे समय तक, तो ज़रूर लिख भेजें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे।

बेचारा दिल क्या करे, खुशबू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद रुक गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है, आकाश में काले काले बादलों का जमघट है, बहुत खूब। तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी और सरदर्द की शिकायत है, तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है, और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे, दादी की नज़र हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज़्यादा डांट ना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार की जब बात कही गई है तो इंतज़ार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतज़ार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बदलती हैं, तो कब किस समय किसका इंतज़ार है ये ज़रूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सकें। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल ज़रूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना ज़रूर प्ले किया जाएगा। चलिए हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे

0: 30 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतज़ार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतज़ार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतज़ार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ ज़रूर जाता हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंतज़ार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतज़ार करवाया, लेकिन इंतज़ार किया लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज़्यादा उदास हूँ, आंखों को इंतज़ार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी और बाबा काफी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पहुँच कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है, जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतज़ार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है, यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतज़ार है, रातों को नींद का इंतज़ार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतज़ार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतज़ार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतज़ार है, हालांकि इंतज़ार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई, और ये जो इंतज़ार है, लंबा इंतज़ार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपीन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतज़ार की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतज़ार करवाएं आपको, अगले गीत का सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

देवता फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे किसी के आने की इंतजार हम करते हैं, लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतजार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतज़ार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतज़ार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम जिसे गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एसवी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूं कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं। यहां पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप जरूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहे विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि द्वारका जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतजार हो रहा है। बिल्कुल इंतजार कीजिए और इंतजार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतजार रहेगा।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाज़ में गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना। अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना, इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत जरूरी कहीं पहुंचना पड़ता है वो इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मजा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफर का इंतजार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतजार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम है एक के बाद एक दूसरे का इंतजार हमें जरूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज़ है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज़ भी अत्यंत मधुर लगती है, और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल हम भी इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भरे संदेशों का। हम मिलेंगे जल्द ही, और सुरीला सफर से अनुराधा को दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा चांदनी फिल्म से आवाजें सुरेश वाडेकर और अनुपमा देश पांडे की, आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है शिव हरी ने।

0: सुरेश वाडेकर के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्योग संवाद, समाधान ऑनलाइन और सीएम मॉनिटरिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होंगे और स्थानीय नागरिकों से संवाद भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा है कि निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का बोध कराता है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि परिवार, समाज और देश के विकास में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और योगदान से भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश के जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच मानसिक स्वास्थ्य और साइको सोशल काउंसलिंग के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। जेल विभाग के अनुसार 6 से 12 जुलाई तक 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को तनावग्रस्त बंदियों की पहचान और काउंसलिंग का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद संबंधित जेलों में बंदियों की काउंसलिंग की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। समझौते के तहत चयनित अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में मास्टर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वे प्रदेश के अन्य जेलों के कर्मचारियों को काउंसलिंग का प्रशिक्षण देंगे। भारतीय महिला टीम आज एम्स्टेलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। नए प्रारूप में पूल ई से शीर्ष दो टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन गोल करने में असफल रही, जबकि भारत का रक्षात्मक पक्ष दूसरे मैच में मजबूत बना रहा। इस ड्रॉ से टीम को पूल डी में महत्वपूर्ण दूसरा स्थान मिला। प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की अनुमान है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, पन्ना, सीधी और सिवनी में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में नर्मदा, मंदाकिनी और अन्य नदियां उफान पर हैं। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है, जबकि गुप्त गोदावरी की गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। मैहर और पन्ना में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। डिंडौरी में भी भारी बारिश के कारण स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखे गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वाल्मीकि समाज

जनों द्वारा कल आगरमालवा जिला मुख्यालय पर गोगा महाराज की प्रमुख मार्गों से निकाली गई छड़ी यात्रा में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज भी शामिल हुए। मंडला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय सह कार्यशाला और समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत नर्मदापुरम जिले की माकननगर के नगरी क्षेत्र में आज जन समस्या समाधान और संवाद शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के तत्वाधान में 22 अगस्त तक गाजर खास जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सिंगरौली में किसानों की एग्रीस्टेक पंजीयन के माध्यम से फार्मर आईडी बनाने, पैक्स की सदस्यता दिलाने, उर्वरक के अग्रिम उठाव के लिए विशेष अभियान 20 अगस्त से 15 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। बुरहानपुर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बुरहानपुर कृषि उपज मंडी ने फिर छलांग लगाई है। लगातार बढ़ती आय और कृषि उपज की आवक के दम पर मंडी को ए ग्रेड का दर्जा मिल गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। यह समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी

0: बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
1: Over the past decade, BRICS has emerged.
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
1: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
3: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
4: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत

0: नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, रात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमती फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदिनी फिल्म से अभी आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां विविध भारती के स्टूडियो में, और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म, बज उठी फोन की घंटी। तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं? क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई
1: भी रहती है, भैया भी आएंगे।
0: जी, तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती, पांच भाई थे।
0: अच्छा,
1: भाई के लड़के फिर भतीजे सबको राखी मैं अकेली बांधती थी, बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं, चार बहन है सबकी, सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ है मैडम। हम
0: हाउस वाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं, बच्चे है, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: ये पान शॉप की है मैडम।
0: अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी

0: भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है
1: ना? दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते कुछ।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना लिए, इसे समझो नरेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी, तो वैशाली जी बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से, अरे वाह। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है
0: जी। अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था, फिर कहाँ से शादी हुई?
1: अपन महाराष्ट्र से, जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे साथ मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहली आएगी।
0: तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो...
1: अभी छोटा

0: का बेबी आएगा ना।
1: ओह अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा
1: तो चलिए सुनते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ, विविध भारती से मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं।
1: हाँ।
0: है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप बताइए?
1: पारस मनी फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आज का हुआ रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर, देवास से।
0: जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना। जी, तो घर में और कौन कौन है अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी तीन बेटियां हैं, तो दो की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो दो बेटियों की शादी हो गई है, तो वो आने वाली हैं मायके?
1: हाँ, मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही है?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ, वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों?
1: हाँ, मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। अभी हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में।
1: बहुत सुंदर सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़ मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप
1: खूब अच्छे से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा,
1: बस मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है?
1: नहीं नहीं मैम, जाऊंगी मैं क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में।
0: अरे वाह, तो घर में तो सब आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी जी मैम।
0: ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम।
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा बचोर।
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम
0: जी,
1: बहुत इंतजार रहता है। भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी मेरा, वो आने वाली है। मैम कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभी आए, लेकिन मेरी भाभियाँ ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती हैं, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले लिया है।
1: जी मैम,
0: है ना?
1: वो इंतजार करती है दीदी आ जाएंगी, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई एक बहन है, कोई दो बहने हैं, 3 बहने हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
0: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियाँ आपका इंतजार करती हैं।
1: मेरा इंतजार करती है, मैं एक भी नहीं जाती है
0: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना?
1: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
0: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे।

0: और हर घर में ये भाभी और ननंद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मजबूर पिक्चर का सुनना है, देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
0: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना
1: जी?
0: तो आप खरीद लाएं या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी जी जी जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी जी ऐसे होता ही है, लेकिन क्या है हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती है, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा 1 दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं, और फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को, उनकी भी तो बहनें हैं ना, वो लोग आए राखी बांधने के लिए। तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए
1: जी। आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं इशिका आप?
1: जी उज्जैन से।
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्नी सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है।
0: अच्छा, क्या बात है। तो ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है, है ना?
1: मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा, मेरे फादर इन लोग, वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में, मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है।
0: इसी साल?
1: यस मैम।
0: अच्छा, अरे वाह,
1: फैमिली अच्छी है मैम, बिल्कुल।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो
1: हाँ जी।
0: आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इशिका। और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैम नमस्ते, पहले तो आपको
0: नमस्ते।
1: हाँ जी, मैं प्रमीला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से।
0: साबरमती से प्रमीला महेश
1: जी।
0: जी तो बताइए प्रमीला जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए।
0: जी यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। जी तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं। और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात की ये कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक काम है।
1: हाँ जी मैम। जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग है महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम।
0: अच्छा, तो मतलब आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं?
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना ना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, तो सखी सहेली और आपका तोरण बनाने का साथ,
1: जी
0: ये हमेशा साथ है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से।
0: प्रमीला जी,
1: जी
0: तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं वही ये सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है।
1: हाँ जी मैम।
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे तो कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी, वही है फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी।
0: तो
1: जो एक दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे।
0: जी
1: यही दुख लगता है ज्यादा।
0: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमीला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ, उसका सामना करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना?
1: शक्ति मिलती है मैम, अभी थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
0: हाँ हम
1: एक भैया है उनसे भी हम
0: जी
1: अच्छे
0: हम
1: रहते हैं,
0: जी
1: रहते हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी करते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखते हैं, बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके बकायदा हमको न्योता मिलता है आने का।
0: ये बात तो है,
1: जाना भी पड़ता है मैम।
0: और आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं, वहाँ से एक छोटे से ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती है।
1: जी मैम मिलती है, नहीं जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते।
0: सही बात है। जी हाँ, क्योंकि बार बार वहाँ जाना संभव नहीं हो पाता। जी तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमीला जी, आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जी मैम मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात है। तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी पिपली बाजार में, लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियाँ मिलती हैं हमें, है ना?
1: हाँ जी।
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन
0: जी,
1: और एक बेटा है प्रियन मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है।
0: क्या बात है।
1: उसकी बेटी है अलिष्का, 8 साल की।
0: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी रक्षाबंधन, तो आपकी क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही है। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था
0: जी।
1: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे
0: जी।
1: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
0: क्या बात है। तो आप सारी मिठाइयाँ आप बनाती हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर, स्पेशली मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में।
0: अरे वाह,
1: मेरे हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। 35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं। तो हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज जांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है। तो वो त्योहार अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदायी रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है
0: जी, वो महसूस कर पा रहे हैं।
1: बहुत याद आती है
0: जी। लेकिन मीना जी, यही है जो हमारे प्रिय है, वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका प्यार एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो अच्छी यादों को आप संजो के रखिए, उनके साथ बिताए, जो हंसी मजाक वाले जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो पहुंचा ही देंगे, है ना जी। जी बिल्कुल। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: बेहमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा।

0: का जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा।
1: ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
2: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को। ये राखी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही हूँ, इंडिया जम्मू कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगाह जान की। जी
1: हाँ,
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेजी हो रही है। अभी गर्मी चल रही क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी, फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है
0: जी, और उसके बाद तो फिर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है
0: जी।
1: खास करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ
0: जी,
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यहाँ डल लेक है, वहाँ नाव शिकारी का सवारी का
0: जी,
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं
0: जी। कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी कश्मीर हाँ। सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत है कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। अपने बारे में कुछ बताइए निगाह जान आप।
1: जी मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। अब मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को।
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान
0: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ चलते चलते।

0: तो मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहल और सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज, और मैं बहुत खुश हूं। जब भी मैं कोशिश करती हूं तो मेरा कॉल लग ही जाता।
1: तो ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल में, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
1: वो तो बस
0: साजन का ही इंतजार
1: आ ही रहे हैं, सितंबर में बस आने ही वाले हैं ना। तो अब ये इंतजार का जो वक्त है
0: खत्म हो गया,
1: बिल्कुल खत्म होने को ही है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश ना हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं? क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे,

और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे, पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के एक माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले। हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुंची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी, ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं, घर का अनाज और सब्जियां हो जाती है, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है, माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है, बाढ़ ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक

बादलों ने सूरज को ढांक लिया था। धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं। उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा, कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन 2-3 महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था, तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़, चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे? 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हर एक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं? समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है? ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए, और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहां तेज बारिश होगी वहां रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर ना मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता ना करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है, जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई। क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था। टेबल लैंप जल रही थी। साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं। दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके

हमने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर। अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा, तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? पर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहां 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं, देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि वहां खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था, और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एकटक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक होठी, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहाँ की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना, चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो, मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही कर

0: करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है। आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सब से मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगी तुम ही कर पाओगी। कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेकी।

0: मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश में संचालित गौशालाओं के खातों में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड पोर्टल द्वारा 109.79 करोड़ की अनुदान राशि का अंतरण किया। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB की मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज भोपाल के फुटल भाई सयाजी में रिटेल क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न ऋण सुविधाओं और क्रेडिट समाधानों की जानकारी उपलब्ध कराना, बैंक और ग्राहकों के बीच संबंधों को और मजबूत करना रहा। और मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोतों का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युववाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, तो हमारी आज की पहली चर्चा का विषय है आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथियों, ये दिवस हर वर्ष 21 अगस्त यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ितों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है। साथियों, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद के पीड़ितों के सम्मान में मनाया जाता है। ये पीड़ितों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा का संदेश देता है। आतंकवादी घटनाओं में कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और परिवार प्रभावित होते हैं। ये दिवस उनके दर्द और संघर्ष को दुनिया के सामने लाता है। साथियों, इस अवसर पर आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की जाती है। उनके साहस और संघर्ष को सम्मान दिया जाता है। साथियों, ये दिवस समाज में शांति, सुरक्षा और मानवता के महत्व को उजागर करता है। साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। साथियों, आतंकवाद से प्रभावित लोगों को न्याय और सहायता मिलना आवश्यक है। उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार और समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथियों, ये दिवस हमें हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की प्रेरणा देता है। इसका संदेश है कि मानवता, शांति और सह अस्तित्व को हमेशा प्राथमिकता दी जाए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति एवं श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ऐतिहासिक स्थल गोलकुंडा किला विषय पर। साथियों, गोलकुंडा किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। ये अपनी भव्य वास्तुकला और मजबूत किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, इस किले का निर्माण काकतीय वंश के समय हुआ था। बाद में कुतुबशाही शासकों ने इसका विस्तार और विकास किया। साथियों, गोलकुंडा किला कभी हीरों के व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कोहिनूर जैसे प्रसिद्ध हीरों का संबंध भी गोलकुंडा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। साथियों, किले की वास्तुकला में इस्लामी और स्थानीय स्थापत्य शैली का सुंदर मेल दिखाई देता है। इसकी ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और बुर्ज इसकी विशेषता है। साथियों, गोलकुंडा किले की ध्वनि व्यवस्था बहुत अनोखी है। प्रवेश द्वार पर ताली बजाने की आवाज किले के ऊपरी भाग तक सुनाई देती है। साथियों, किले के अंदर महल, मस्जिद, मंदिर और जल संरक्षण की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। इससे उस समय की उन्नत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का पता चलता है। साथियों, गोलकुंडा किला आज पर्यटकों के लिए प्रमुख

आकर्षण है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसके इतिहास और सुंदरता को देखने आते हैं। साथियों, ये किला भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसकी भव्यता हमें अपने इतिहास और पूर्वजों की उपलब्धियों से परिचित कराती है। साथियों, ये तो थी एक महत्वपूर्ण जानकारी ऐतिहासिक स्थल गोलकुंडा विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अरमान मलिक और पलक मुछाल की। गीतकार थे मनोज यादव और संगीत से सजाया था अमाल मलिक ने। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता भारतीय संस्कृति में गाय विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी मीनाक्षी राजे।
1: भारत संस्कारों का देश है। भारत अनेकता में एकता का देश है। भारत वह वट वृक्ष है जिसकी छाँव में विभिन्न रंगों, धर्मों व रीति रिवाजों के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है भारतीय संस्कृति में गाय, या यूं कहें भारतीय समाज में गाय की स्थिति या स्थान। भारतीय संस्कृति अपने आप में अनूठी है। प्रेम, सौहार्द और सहिष्णुता के रंग तो उसमें घुले ही हैं, साथ ही दूसरों को आत्मसात करने का गुण भी है। तभी तो देश विदेश से लोग भारत आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं, जैसे मदर टेरेसा और एओ ह्यूम जैसे अनेकानेक व्यक्ति। भारतीय संस्कृति प्रेम व स्नेह केवल मनुष्यों से करना ही नहीं सिखाती, वरन पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को प्यार व स्नेह देना सिखाती है। हमारे समाज में गाय का विशेष स्थान रहा है। इसी संदर्भ में हम यदि प्राचीन काल पर दृष्टि डालें तो युगों युगों से हमें प्रकृति व जीव जंतु के हित में ही पाएंगे। इन्हीं में से एक है गाय। गाय को मातुल्य ही समझा जाता रहा है, वह पूजनीय है, वह माता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। गाय का स्थान सर्वोपरि है। सतयुग में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा गाय का पूजन अर्चन किया जाता था। ईश्वर भी गाय को माता का स्थान देते थे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी व सीता जी ने वनवास काल में गाय की सेवा शुश्रूषा की। समकालीन राजा महाराजा, सामान्य जन समुदाय सभी प्रकृति व पशु प्रेमी हुआ करते थे। गाय को गौ माता भी कहा जाता है, क्योंकि इससे अमृत तुल्य दूध, स्वास्थ्यवर्धक दही व पौष्टिक घी मिलता है, इसलिए गाय को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में विलक्षण गाय हुआ करती थी, उसे कामधेनु कहा जाता था। कामधेनु अर्थात मनोकामना पूर्ति करने वाली गाय। कहा जाता है कि कामधेनु से जो भी इच्छा की जाती थी वह पूरी कर देती थी। कामधेनु को गायों में सर्वोपरि धेनु माना जाता है। हमारे ग्रंथों में कामधेनु का वर्णन मिलता है। उसी के अनुसार कामधेनु सतयुग में समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और 36 कोटि देवी देवता उसमें वास करते हैं, इसलिए कामधेनु अतिशय पूजनीय है। द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्मे थे। श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय रही है। श्री कृष्ण यदुवंशी थे, वे ग्वाले रहे हैं, गायों को वन ले जाते थे। श्री कृष्ण के युग में गायों का संरक्षण, सम्मान, स्नेह और महत्व जितना बढ़ा वह अकथनीय है। गाय का जितना सम्मान और सेवा शुश्रूषा श्री कृष्ण ने की, शायद ही किसी और देवी देवता ने की हो। श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। श्री कृष्ण के द्वारा माखन के लिए की गई लीलाएं सभी को बहुत आनंद देती हैं। श्री कृष्ण के धेनु प्रेम ने गाय को अतिशय पूजनीय बना दिया। शाम को संध्या वंदन के लिए गौधूली बेला उत्तम मानी जाती है। जब गायें वन से अपने घरों को लौटती हैं, बड़ा ही सुहावना दृश्य होता था। बछड़े अपने अपनी माओं से मिलने के लिए रमाते थे और गायें उनके पास दौड़कर जाती थीं। बड़ा ही मनोहारी दृश्य हुआ करता था गौधूली बेला का। बड़े बड़े राजघराने हो या सामान्य जन, सभी के पास गायें हुआ करती थीं। घरों में गौशालाएं बनवाया करते थे। गाय के बछड़े बड़े होकर हल जोतते थे, जिससे खेती के कामों में भी मदद मिलती थी। भारत में कृषि ही जीवन यापन का मुख्य साधन रहा है। परंपरागत कृषि आज भी बैलों द्वारा हल जोतकर ही की जाती है, परंतु अत्याधुनिक कृषि यंत्रों के बाजार में उपलब्ध होने से बैलों के द्वारा कृषि कम ही की जाती है, क्योंकि अब भारत संपन्नता की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गाय से प्राप्त दूध, दही, मक्खन व घी बहुत ही उत्तम होता है। जिन नवजात शिशुओं को माँ का दूध हजम नहीं होता, उन्हें गाय के दूध का सेवन बताया जाता है, क्योंकि गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक, सुपाच्य व लाभकारी होता है। कृशकाय व्यक्तियों को गाय के दही व घी का सेवन का फायदेमंद रहता है। अपच हो तो गाय के दही से बना मट्ठा बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह एसिडिटी की समस्या आम हो गई है, इसमें आधा गिलास दूध व आधा गिलास पानी पीने से लाभ होता है। नेत्र ज्योति कम हो तो गाय के घी से बना काजल लगाने से आंखों में ठंडक तो मिलती ही है, साथ ही नेत्र ज्योति भी बढ़ती है।

के दूध से सौंदर्य समस्याएं भी दूर होती हैं। आज महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करती युवतियां स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट कर रही हैं। यदि वे गाय के दूध से चेहरे को साफ कर लेप लगाएं तो उनका चेहरा फूल की तरह खिल उठेगा और पैसों की भी बचत होगी। यह तो रहे गाय से निर्मित दूध दही घी के फायदे। गाय का मूत्र भी कम उपयोगी नहीं है। इसके सेवन से टीबी जैसी गंभीर बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में पूजा अर्चना में पंचगव्य का विशेष विधान है। पंचगव्य अर्थात गाय का घी, गाय का मूत्र, गोबर, गंगा जल व तुलसी दल को मिलाकर मिश्रण बनाया जाता था। उसके सेवन से ही पवित्र होकर पूजा की जाती थी। पहले हर पूजा पाठ में पंचगव्य बनाया जाता था, परंतु अब आसानी से उपलब्ध न होने के कारण तथा सो कॉल्ड मॉडर्न होने के कारण इसका उपयोग लगभग बंद ही हो गया है। भारतीय संस्कृति में गाय को जो स्थान मिला है वह किसी और धर्म में नहीं मिलता। हमारे दादा नाना और उनके भी दादा नाना के ज़माने में गौदान जरूर किया जाता था। अपने जीवित रहते गौदान करने से माना जाता था कि वैतरणी पार कर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और यह प्रथा राजा रानियों से लेकर सामान्य जन समुदाय तक प्रचलित थी। इसके विपरीत यदि किसी से गौ हत्या हो जाती थी तो उसे जघन्य अपराध माना जाता था। इस अपराध से मुक्ति के लिए गंगा स्नान व गंगा जी में सिर मुड़ाने की प्रथा थी व ब्राह्मण भोज कराना भी जरूरी होता था। तब तक अपराधी के घर का दाना पानी तक नहीं छूते थे। गाय का तो गोबर भी काम में आता है। पंचगव्य को तो पिया जाता था जिसमें गोबर भी मिलाया जाता है। गोबर से घर आंगन को लीपते हैं जिससे घर आंगन साफ स्वच्छ होने के साथ साथ कीटाणु रहित भी हो जाता है और शीतल भी रहता है। गाय के गोबर से बने उपले उत्तम ईंधन है। गरीब घरों में कंडों से ही भोजन बनाया जाता है। यह सस्ता व सरलता से उपलब्ध ईंधन है। इनका धुआं मच्छरों को दूर रखता है। यह कीटनाशक का भी काम करता है। होली के समय गोबर से बने बरूले रखे जाते हैं। दहन के समय होलिका के साथ जलाते हैं व राख को घरों में रखते हैं। गोवर्धन की पूजा का भी विशेष विधान है। गोबर से हाथ पैर और बड़ा सा पेट बने देवता गोवर्धन कहलाते हैं। इनकी पूजा दीपावली के एक दिन बाद की जाती है तथा विभिन्न प्रकार का प्रसाद लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि सब जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नर नारी सभी एक दूसरे के सान्निध्य में ही रहना पसंद करते हैं। इसी से प्रकृति व मनुष्य के बीच तालमेल बना रहता है। ईश्वर की खूबसूरत रचना पृथ्वी, जल, आकाश, बादल, पशु पक्षी, कीट पतंगे, नर नारी सभी का अपना अपना महत्व है और इस सृष्टि में सभी का योगदान भी है। तभी पृथ्वी व पृथ्वीवासी सकुशल व खुशहाल रहेंगे। जिस तरह हर घर के आंगन में तुलसी होती है ठीक उसी तरह घर में गाय भी होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हो और गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो यह शुभ संकेत होता है। गाय यदि दाहिना पैर आगे किए बैठी हो तो हमें नमन करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय चारा व हरी हरी घास व भूसा भी खाती है। अनाज का दलिया, बची हुई सब्जियां सभी कुछ खिला सकते हैं। गाय के भरण पोषण में अधिक खर्च नहीं आता। आज भी हमारे घरों में रिवाज है कि प्रथम रोटी गाय के लिए निकाली जाती है तथा भोजन का प्रथम ग्रास गौ के नाम का निकालते हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में गाय का क्या स्थान है। गाय के रख रखाव व भरण पोषण के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए शासन भी कई तरह के कार्य कर रही है। जगह जगह चरो यानी गाय के पीने का पानी की व्यवस्था कराती है। निराश्रित गायों के लिए कांजी हाउस बने हैं जिसमें आवारा गायों को रखा जाता है तथा खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इन सब के बावजूद दूसरा पहलू यह भी है कि गायों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इंसानों को इंसानों के लिए भी वक्त नहीं रहा। वहाँ असहाय पशुओं का रख रखाव कौन करे। हमारे समाज की बड़ी विडम्बना ही है कि आज सड़क हादसे में कई गायें रोजाना घायल हो जाती हैं। उन्हें ना कोई भोजन कराने वाला है और ना ही उनकी पूंछ परख करने वाला। बेचारी गायें जो मिल जाता है उसे खा लेती हैं। कचरे के ढेरों में पड़ा पॉलीथिनों में खाना खाने के साथ पॉलीथिन भी खा जाती हैं जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। क्विंटलो पॉली बैग निकलते हैं उनके पेट से। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भिस्टा तक खा जाती हैं। इतनी दयनीय स्थिति देखकर मन दुख से भर जाता है और सोचता है कि काश राम राज्य फिर हो, दोबारा कृष्ण आए जो गायों को अपना सर्वस्व समझें व उनका सम्मान करें, गायों को उनका गोपाल मिल जाए।
गाय अतिशय पूजनीय है। हम सभी दृढ़ संकल्प लें कि आज से अपने आसपास की गायों को पीने का पानी व भोजन का प्रथम ग्रास जरूर दें व सड़कों पर

आवारा गाय बैलों को कांजी हाउस में भेजें। और हमारे भारतीय संस्कृति में गौ को माता की संज्ञा दी गई है। जिस तरह हम अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, ठीक उसी तरह गाय का

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेस से ही प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्किल्स विषय पर। साथियों, ऑनलाइन शिक्षा से घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, इससे समय और दूरी की बाधा कम होती है। साथियों, डिजिटल स्किल्स आज के समय में शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टूल्स का ज्ञान महत्वपूर्ण है। साथियों, ऑनलाइन माध्यम से ईबुक, वीडियो और ऑनलाइन कोर्स आसानी से उपलब्ध होते हैं, विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं। साथियों, डिजिटल शिक्षा से नई तकनीकों की जानकारी मिलती है, इससे विद्यार्थियों में आधुनिक सोच और रचनात्मकता विकसित होती है। इंटरनेट का सही उपयोग सीखना डिजिटल शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे जानकारी खोजने और उसका सही उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है। साथियों, ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है, इससे आत्मनिर्भरता और समय प्रबंधन की क्षमता बढ़ती है। साथियों, डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा और असाइनमेंट आसानी से किए जा सकते हैं, इससे शिक्षा प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और तेज होती है। साथियों, डिजिटल शिक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन गोपनीयता का भी ज्ञान जरूरी है, विद्यार्थियों को सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। साथियों, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्किल्स भविष्य की शिक्षा और रोजगार की मजबूत नींव हैं। इनका सही ज्ञान व्यक्ति को बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्किल्स विषय पर। साथियों, इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे

आज की रोजगार सूचना। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद की संख्या है 9124। पद का नाम है जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में बैचलर की डिग्री या अपियरिंग होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.bank.in पर विजिट करें। तो साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो दीजिए अपनी मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

मुंशी प्रेमचंद ने कहा, जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र भी नहीं।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लेजा के लफ्ज और लम्हे।
1: हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है लिजा के
2: लफ्ज और लम्हे।